0: रेडियो नगर 90.4 एफएम आवाज तुमचा।
1: तुम्ही ऐकत आहात स्नेह वार्ता फक्त रेडियो नगर 90.4 एफएम वर।

0: सवरिया, ओए होए ओ तेरी तिरछी नजरिया,
1: ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए ले गई मेरा दिल तेरी जुल्मी नजरिया, ओ गुजरिया, ओए होए होए ओ जाने सारी नगरिया,
0: आके सीधी लगी दिल पे जैसे कतरिया, ओ सवरिया।

0: आए करार हो गोरी हो गोरी हो गोरी बढ़ के बुदन तीर भी टक्कर क्या मैं करूं गोरी मुझे तुझसे है प्यार जो न तुझे देखूं न आए करार
1: हटो जाओ ना बनाओ हटो जाओ हाय हाय ना बनाओ हाय हाय।

0: पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़ हो गोरी, हो नटखट हो खटपट हो पनघट हो झटपट। पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।
1: अरे नैना ओ मीठे बहना, अरे नैना हाय हाय मीठे बहना हाय हाय।

मुक बिम बुम मुक बिम बुम मुक तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग जरा तेरी गठरी में लागा चोर मुसाफिर जाग जरा तू जाग।

परम सद्धेश पूज्य गुरुदेव के चरणों में कोटि शिवंदना और गुरुदेव के प्रतिनिधि बनकर अपनी नजर अपना आशीर्वाद देने के लिए पधारे हुए श्रद्धेय महाराष्ट्र प्रवर्तक सिंह जी के चरणों में आपकी मेरी श्री श्री अनुकृषि जी महाराज साहब गुरु भक्ति का एक अनूठा नजारा प्रस्तुत करने वाले श्रद्धालु श्रोतागण, अभी मैं आ रहा था, रास्ते में मेरे साथ एक भाई चल रहा था और भाई चलते चलते मुझे पूछ रहा था, मुझे अठाई करनी है। अब मैं कहता हूं मुझे अठाई करनी है तो प्रवर्तक सिंह जी कहते नहीं करनी है। अब तुम प्रवर्तक सिंह जी को मेरी ओर से विनंती करो कि मुझे अठाई करने के लिए आशीर्वाद दे दे। और उस भाई ने मुझे पूछा अठाई करनी, मैंने कहा कर ले। उसकी श्रद्धा की बात कर रहा हूं मैं, उसकी आस्था की बात कर रहा हूं। उसका बाईपास हुआ है, चार गोलियां चल रही है, बीपी की गोली चालू है, शुगर की गोली चालू है, खून पतला करने की गोली चालू है, पराठे करने का भाव है। मैंने कहा कर सकता है, केवल पचकान शाम को लेना है शुगर चेक कर करके। ऐसे कोलेस्ट्रॉल की बीमारी हो कि बीपी की बीमारी हो कि शुगर की बीमारी हो, इन सारे बीमारियों का मूल कारण कोई है तो भोजन। नमक खाएंगे तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, चिकना खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल होगा, पानी कम पिएंगे तो खून गाढ़ा होगा। अब तपस्या में तो ना नमक, नो शुगर, नो कोलेस्ट्रॉल, जाएगा तो क्या जाएगा, केवल पानी। और पानी जाएगा तो खून को पतला करने के लिए दवा लेने की जरूरत है ही नहीं। ऐसा हो सकता है, ऐसा होता है, जिनको 400 शुगर है वो भी अठाई कर चुके हैं। मैंने तीर्थ शिष्य महासभा को भेजा है पिछले साल के वो नाम लाने के लिए कि जिसने जिंदगी में उपास नहीं किया था उसने मांस खमन कर लिया है। गुरुदेव के जन्मोत्सव पर अठाई शुरू करी और मांस खमन पूरा कर लिया। ऐसा हो सकता है, शरीर से नहीं होता है, श्रद्धा से होता है। शक्ति श्रद्धा से आती है, मां हुलसा ने अपने बच्चे को गुरु के दर पर पहुंचा दिया। कल का वाक्य फिर याद करिए कि मां जहां पहुंचाती है और बच्चे को मंजिल मिल जाती है, वही बच्चे की मंजिल हो जाती है। कोई दीक्षा लेने के लिए रतन ऋषि महाशय के पास नहीं आए थे, कोई स्वयं की भावना से नहीं आए थे, मां चाहती थी कि मेरा बेटा जिसको मैंने तीर्थंकर का नाम दिया है उसने तीर्थंकर के साथ ही जुड़ना चाहिए, उसने किसी दूसरे के साथ जुड़ना ही नहीं चाहिए।
और प्रवर्तक से जी की भी एक ही भावना है, मेरी भी एक ही भावना है कि आपने केवल गुरुदेव के साथ ही जुड़ना चाहिए। और गुरुदेव के साथ जुड़ गए तो तीर्थंकर के साथ जुड़ने की जिम्मेदारी गुरुदेव की है। मां तीर्थंकर के साथ नहीं जुड़ पाई, मां ने गुरुदेव के साथ जोड़ दिया और गुरुदेव ने तीर्थंकर के साथ जोड़ दिया। ये ऐसा ही रास्ता होता है। और ऐसे गुरु के साथ जोड़ा, ऐसे गुरु के साथ जोड़ा कि उसके जैसा शिल्पकार, उसके जैसा मूर्तिकार, उसके जैसा कुंभार, उसके जैसा माली आज खोजो तो भी नहीं मिलता है। रतन ऋषि जी वो नाम है जिसके नाम में ही डायमंड है, और डायमंड जब ऋषि हो जाता है तब उसका शिष्य भगवान हो जाता है। उन्होंने तराशा, और ऐसा तराशा, ऐसा तराशा, ऐसा तराशा कि फिर जिंदगी में और किसी को तराशने के लिए जगह ही नहीं छोड़ी। कुंभार ऐसा घड़ा बनाता है कि उस घड़े पर और किसी को काम करने का अवसर ही नहीं रहता है, सारे उस घड़े का उपयोग कर सकते हैं। मूर्तिकार ऐसी मूर्ति बनाता है, ऐसी मूर्ति बनाता है कि लोग केवल पूजा ही करते हैं। रतन ऋषि जी वो नाम जिसने ऐसी मूर्ति बनाई कि अपने गुरु के सारे सपने सच कर दिए। पुत्र वही होता है जो बाप को कर्ज से मुक्ति दिलाता है, पुत्र वही होता है जो पिता के अधूरे सपने पूरे कर देता है, और गुरु वही होता है जो अपने शिष्य को भगवान बनाता है। ना तो कभी मां हुलसा ने सोचा होगा, ना कभी निमेचंद ने सोचा होगा कि मैं कभी भगवान बनूंगा। और जो भगवान बनने की सोचते हैं वे कभी भगवान बनते नहीं है। जो भक्त बनने की सोचते हैं, जो शिष्य बनने की सोचते हैं, वे ही भगवान हो पाते हैं। भगवान के नारे लगाने से कोई भगवान होता नहीं है। लोकमान्य संत प्रवर्तक श्री रूपचंद जी महाराज सब बार बार कहते थे कि तुम चाहे जिसको और चाहे जो व्यक्ति स्वयं को सम्राट कहला ले, लेकिन आचार्य सम्राट कहने के बाद एक ही चेहरा उभर करके आता है, गुरुदेव का। महाप्रज्ञ आचार्य महाप्रज्ञ, तेरा पंथ संघ के आचार्य, दो हजार चार में उनका
मार्च महीने में इंदौर प्रवास चल रहा था। महावीर जन्म कल्याणक और मार्च महीने के कार्यक्रम उनका पूरा इंदौर चल रहा था। और तेरा पंत संघ के आचार्य के सभी कार्यक्रम एक साल पहले तय हो जाते हैं कि किस दिन किस समय वो कहाँ रहेंगे। इंदौर में उनके पूरे कार्यक्रम की श्रृंखला बनी हुई थी। उस समय ऋषि प्रवीण भी इंदौर में था और गुरुदेव का पुण्यतिथि का समारोह चल रहा था। और उनकी ओर से समाचार आए कि मैं गुरुदेव के स्मृति महोत्सव में आना चाहता हूं। कानों पर विश्वास नहीं हुआ कि जिनके कार्यक्रम में चेंजेस नहीं होते हैं वो होकर के कह रहे कि मुझे आना है। संघ गया विनंती के लिए, वो पधारे। भूल नहीं सकता हूं, एक घंटे तक आचार्य भगवान की महिमा का गान करते रहे। 1 आवर्स गुरुदेव के साथ उनके दिल्ली प्रवास के बीते हुए सारे संस्मरण उन्होंने सुनाए। सारा व्याख्यान, बहुत सारा व्याख्यान मुझे आज भी उनका याद है। एक वाक्य वो बोल गए बहुत गहराई से। जब भी कभी उनका नाम सुनता उनकी वो आनंद की छवि मेरे दिल में उभर करके आती थी। कैसे तराशा होगा रतन ऋषि जी मां सामने। तराशने वाले मिलना मुश्किल है। ये जितना सत्य है उतना अगला भी सत्य है कि तराशने वाले को तराशने देना, ऐसे शिष्य मिलना भी मुश्किल है। हर पत्थर की मूर्ति बनती नहीं, मूर्ति उसी की बनती है

चने का घाव हो गया और मूर्ति पत्थर टूट गया, उसकी मूर्ति बनती नहीं है। और चने नाखून से लेकर, पक्के नाखून से लेकर तो सिर तक चलती है। एक जगह छनी लगा करके मूर्ति बनती नहीं है, नख शिखांत तो छनी चलती है। प्रवचन सुनना आसान है, प्रवचन देना उससे आसान है, लेकिन छनी के घाव झेलना और टूटना नहीं, ये कला जिसको सद गई वही वही आनंद भगवान होता है। इच्छनिया चलाने वाले को कला लगती है, और ऐसे कलाकार कोई थे तो श्री रतन ऋषि जी महाराज साहब, मानक दौंडी जिनकी जन्मभूमि है, पिरगल जिनका वंश है, और विक्रम संवत 1936 आषाढ़ शुक्ला नवमी को जिन्हें तिलक ऋषि जी महाराज साहब ने बाप बेटे को एक साथ घोर नदी के उस भूमि पर दीक्षा दी थी। रतन ऋषि जी महाराज साहब, बाप बेटों ने दीक्षा ली थी, पिता का नाम था स्वरूप ऋषि जी, स्वरूप जन जी, और बेटे को तिलक ऋषि महाराज साहब ने बनाया रतन ऋषि। ये सच है कि वो केवल स्वयं के ही जीवन के डायमंड नहीं थे, तो किसी भी कोयले को डायमंड बनाने में समर्थ थे। मां को जिस बेटे को मां ने केवल प्रतिक्रमण सीखने के लिए चरणों में पहुंचाया, प्रतिक्रमण सीखने के लिए। और आपको लगता होगा कि रतन ऋषि महाराज साहब ने उनका दुलार किया होगा, लाड किया होगा, उनकी इच्छा के अनुसार उनको रखा होगा। नथिंग। उम्मीद करता हूं कि कल का प्रवचन आपको याद होगा, जो संतान की इच्छा पूरी करते हैं वे धृतराष्ट्र और गांधारी होते हैं, जो संतान को सुखी नहीं समर्थ बनाते हैं वही कुंती होती है। शिष्य को खुश रखने वाले गुरु शिष्य को खुश तो रख देते हैं लेकिन भविष्य बर्बाद कर देते हैं, और शिष्य को तराशने वाले अनुशासन में रखने वाले गुरु एक ऐसे मूर्ति का निर्माण करते हैं कि वे गुरु का नाम, प्रभु का नाम, धर्म का नाम, अपने मां बाप का नाम अमर कर जाते हैं। मुझे नहीं लगता कि रतन ऋषि मां साहब ने कभी सोचा होगा कि ये शिष्य जिसको मैं तराश रहा हूं ये पूरे संघ और समाज को तराशेगा। ये अनगढ़ पत्थर को भी तराशेगा, बिगड़े हुए पत्थर को भी तराशेगा,

मुझे नहीं लगता है कि रतन ऋषि जी महाराज साहब ने कभी ये सोचा भी होगा। लेकिन बनाते समय ऐसा तराशा, ऐसा तराशा, ऐसा तराशा है कि उसके बाद किसी को किसी को किसी को ऋषि आनंद का गुरु बनने का मौका ही नहीं मिला है। शिष्य ने भी अपने गुरु को ऐसा पिया, ऐसा पिया, ऐसा पिया कि उनके जीवन में और किसी को आने के लिए जगह ही नहीं बची। और गुरु ने भी अपने चेले को ऐसा भर भर करके दिया कि चेले को फिर जिंदगी में कहीं पर हाथ फैलाना ही नहीं पड़ा है। हर गुरु देता तो भर भर करके ही है। ये सवाल तो शिष्य का है, वो भर करके दिया हुआ कितना भर करके रखता है। बोलने दे मुझे, जिसको गुरु कृपा मिलने के बाद और किसी की कृपा की जरूरत पड़ती है, उसने गुरु की कृपा को कभी सुरक्षित रखा ही नहीं। एक लोग को द्रोणाचार्य के बाद किसी गुरु

उसने गुरु की कृपा को कभी सुरक्षित रखा ही नहीं। एकलव्य को द्रोणाचार्य के बाद किसी गुरु की